0: ई के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 7

0: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Inspire FM on 105.1 FM.
2: I have wisdom.

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
2: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
3: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
4: Muslims don't worship the Kaaba. It simply acts as a global compass. No matter where you are on earth, facing the Kaaba unites all Muslims in one direction during prayer.
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@core.org.uk।
7: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
8: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim और जनाब अशफाक हुसैन की आवाज में है। इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है उनके लिए दुआए खैर की दरखास्त है।
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।
10: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
11: بسم الله الرحمن الرحيم।
10: अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।

0: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
1: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
2: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
3: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
4: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
5: हक की आवाज़ कभी दबती नहीं, कभी झुकती नहीं, कभी मिटती नहीं। एतदाल, हुर्रियत फिक्र और सच्चाई का परचम। आइए सुनिए वो आवाज़ जो दलील से लबरेज, कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर और हक की गवाही देती है। मैं हूँ इमाम हाफिज इजाज अहमद, आपके सामने पेश करूँगा प्रोग्राम आवाज़ हक में। हक की आवाज़, एक ऐसा पैगाम जो दिलों को बेदार करे, जहनों को रोशन करे। हर सोमवार 11 बजे ओनली ऑन इंस्पायर FM 105.1।
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.

वो मदीने की मंजिल को देखे बगैर भी इससे आशना है, क्योंकि दिल का रास्ता क्योंकि दिल का रिश्ता फासले का मोहताज नहीं होता। ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं नहीं होगा, देखे बगैर अपनी मंजिल से आशना हूँ। और फिर इंतज़ार की को वो कैफियत कि शायर कहता है कोई तो आँख वाला गुजरेगा उस तरफ से, तैबा के रास्ते में मुंतज़िर खड़ा हूँ। सामीन कराम, यह इंतज़ार सिर्फ सफ़र का नहीं, यह मोहब्बत का इंतज़ार है, हाज़िरी की आरज़ू है, मदीने की गलियों और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद की तड़प है। और ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। या अल्लाह, हमें भी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर की बादब हाज़िरी नसीब फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ज़िंदा रख, और हमें दुनिया में सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने और आखरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। समीन कराम, एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

और इस स्टेज से यही पैगाम हमेशा दिया जाता है और हर बार दिया जाता है कि हश्र तक लाजिम है हुब्बे अहले बैत। मिलके जरा कह दें, हश्र तक लाजिम है

या अल्लाह पाक, हमारे वालदैन को सेहत और सलामती अता फरमा, हमारी औलाद को नेक साले और दीन से मोहब्बत करने वाला बना, हमारे नौजवानों को हर बुराई और बुरी सोहबत से महफूज फरमा, और हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमा। प्यारे सामीन, अगर आपके पास भी कोई नात की फरमाइश, सलाम, दुआ या पैगाम है तो हमें ज़रूर भेजिए। हो सकता है कि आपका पैगाम किसी दूसरे सामे के दिल में खुशी पैदा कर दे। और जो भाई बहन सफ़र में हैं, गाड़ी चला रहे हैं या जुमे की तैयारी कर रहे हैं, इन सब से गुजारिश है कि एहतियात से सफ़र करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और जुमतुल मुबारक की तैयारी मोहब्बत और अदब के साथ करें। सामीने कराम, आप भी हमारी इस बज़म का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद, नातिया, सुफियाना कलाम दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। 0158248182 डायल कीजिए। इसके अलावा आप हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे मेहमान बनिए और अपनी आवाज़ में हमद, नातिया, सुफियाना कलाम दूसरों को सुनाइए। सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1।

0: www.ofa.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Friday, 28th of August, for Inspire FM, read by Shahi Mirza. Iran to draft conditions to open Hormuz following mediator requests. Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 480 killed by flash flood. 18 dead from battery fires show hidden danger of UK's e-bike boom. Trump signs order to rename Lake Ontario as Lake America. NHS bosses warn of chaos in ADHD and autism care. Extra 200 police drafted into aid force investigating wrong-way crash and fire deaths. Bank holiday weekend to see more thunderstorms and rain. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने बरतानी के फॉरेन मिनिस्टर से लंदन में मुलाकात की। ईरान के प्रेसिडेंट ने अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों और इक्तसादी दबाव की मुहिम को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने 47 बरस बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली स्टेट्स की फहरिस्त से निकाल दिया। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

बड़ा इंसान बनना अच्छी बात है, पर अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसे नफरत है इसके आदमी से। अल्लाह की तलाश करने वाले इंसानों की राहों से गुजरते हैं। इंसान ही मुतलाशी है और इंसान ही मजहरे सफात है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया अपने जहार के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी पहचान के लिए। इंसानों को सलाहियतें अता फरमाई ताकि वो इस कायनात के बारे में और इसके खालिक के बारे में गौर करें। अल्लाह ताला ने इंसान के जरिए अपना और अपनी मखलूक का तारुफ कराया है। सामीन, हम हर रोज दुआ करते हैं कि ए अल्लाह।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.
1: इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, आयात की झुरमट में तेरे नाम की मसनत, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जुड़ा है, खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताबे तेरा रज़े रेज़ा नक्शे कफ़े।

इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेजा नक्शे कफे पा है। वल्लैल तेरे साये गेसु का तराशा, वल असर तेरी नीम नगाही की अदा है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है।

इल्हाम की रिमझिम, कहीं बख्शिश की कटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। खालक ने कसम खाई है उस शहरे अमा की, जिस शहर की गलियों एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था। अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है, सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी, हजर को अबूजर तेरी बख्शिश ने किया है।

अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना एतराफ़ शिकस्त तुमसे, अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़ शिकस्त तुमसे। मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता।

अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना है इतराफ़े शिकस्त तुमसे दो, मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना बस जरा नैलाम होने दो, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा अंजाम होने दो।

क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ होगी न मजाक मेरा होगा, गरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता।

हरफ गलत न था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। मीजान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था या कसूर के परखा गया गलत। तूफान के बाद अहले तब को है ये फिक्र, साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत। अफराद हैं गलत या गलत हैं तसव्वुरात, ये इस माशरे को ढाला गया गलत।

मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर। जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम नगाहे इश्क पैदा कर, जमाले जर्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा मगर शर्त ये है कि मैं कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। अगर न बदलूं तेरी खातर हर चीज तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर।

0: I think you'll enjoy this one.
1: आप लोगों को जिन्नात जिन स्टोरीज पसंद है यही मसला है इस कॉन का. जिन्नात के बारे में कुरान ने बात की है. थोड़ी सी जिन स्टोरी सुनते हैं, थोड़ी सी कुरान से जिन स्टोरी. अल्लाह ताला ने जब कुरान के नाजिल करने का फैसला किया, सातवें आसमान से ऊपर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ. उसके बारे में थोड़ा तदब्बुर करते हैं. इसके बारे में ये जो कायनात है ना, पहला समा है ये, जो सितारे हमें नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक हमें पता चला है कि इस कायनात की, फिज़िकल यूनिवर्स की जो उम्र है फ़िलहाल तकरीबन 13.9 बिलियन लाइट ईयर्स, ये उम्र है इसकी. यानी आप जब आसमान में सितारे देखते हो तो वो जो रोशनी आप देख रहे हो ना सितारे की, उसको 13.9 बिलियन साल लगे हैं आपकी आंख तक पहुंचने में. 14 बिलियन साल उसको लगे हैं. आपको पता है रोशनी की स्पीड, उसकी रफ्तार क्या है, लेकिन उस रफ्तार के बावजूद वो इतना सफ़र करके आपकी आंख तक पहुंची है. शायद आपको अंदाज़ा हो ना हो, जब आप सूरज की रोशनी को देखते हो तो वो रोशनी आपकी आंख तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं. आप सूरज को नहीं देख रहे, आप सूरज को जो जैसे वो 8 मिनट पहले था वो देख रहे हो असल में, क्योंकि उसकी रोशनी को यहाँ तक आँख तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाते हैं. तो आप अंदाज़ा करें सितारे कितने अरबों ही अरबों ही अरबों के ऊपर वो सितारे आपकी आँख तक पहुँच रहे हैं. ठीक है, तो आप तारीख को देख रहे हो. जब आप किसी सितारे को देख रहे हो ना, तो एक बहुत कदीम तारीख की तरफ आपकी नज़र जा रही है. अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, हमने सबसे निचला आसमान, कितने आसमान हैं, 7. अल्लाह कहते हैं सबसे निचला आसमान मैंने सितारों से मुजयन किया. यानी जहां तक इंसान को सितारों का इल्म है, वो कौन सा आसमान है, पहला आसमान है. उसके बाद उसके मुकाबले में दूसरा आसमान है, जो रिवायत में पता

का इरादा किया। पहले तबीर क्या कही थी मैंने, खराबी का इरादा किया गया। जो पहली ताबीर है उसमें मैंने अल्लाह का जिक्र किया, नहीं। किसका इरादा है उसका जिक्र किया, नहीं। दूसरी में जब मैंने कहा अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया, अल्लाह का जिक्र किया, जिन्नात को उस वक्त से भी अल्लाह ताला के बारे में बात करने की तमीज़ है। बुराई के लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला को मुंसे क्या कोई बुराई थी ने किया, अच्छाई की हिदायत की बात आई, क्या कहते हैं, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या फिर उनके रब ने उनके लिए कोई हिदायत का इरादा किया था, किसी हिदायत का इरादा। सुभान अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अल्लाह ताला के मामले में अदब और तमीज़ का एक तकाजा है। कुरान सिर्फ मालूमात नहीं देता, अल्लाह ताला के बारे में बात करने की तमीज़ भी सिखाता है। फलसफी जो है ना, वो खुदा के बारे में जैसे चाहे बात करे, क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर उठा सकता है जो किसी ना जो उठाने के लिए नामुमकिन हो, या कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना कभी ना उठा सके, इस तरह की बातें वो बकवास करते हैं अल्लाह ताला के बारे में। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में वो सिर्फ एक फलसफी कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला के मामले में कोई लिहाज, कोई अदब, उनकी अजमत का कोई बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन जिन्नात को ना मालूम होते हुए भी इतना एहसास है कि कोई ख़राबी की बात करेंगे तो साथ में किसका लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो, अल्लाह ताला का ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो। इसकी एक और मिसाल देखते हैं, अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, वह इदा अनअमना अलल इंसान, जब हम इंसान पर नेमत करते हैं, अअरदा वना बिजानिबिही, वो अपनी पीठ मोड़ लेता है और बड़ा अकड़ जाता है अपनी साइड पर, बड़ा बन जाता है जैसे बहुत कमा लिया उसने किया। अल्लाह कहते हैं हमने इनाम किया था, जब कहा हमने इनाम किया तो किसका जिक्र है इसमें, अल्लाह ताला का। वइदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, जब शर उसको छुए तो बिल्कुल मायूस हो जाता है। जब कहा शर छुए किसका जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला का जिक्र हटा दिया, क्योंकि शर के साथ अल्लाह ताला को नस्ब नहीं किया जाएगा। ये अदब का तकाजा है, जो भी इंसान को छुएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से, बुरा हो या अच्छा हो। लेकिन यहां सिर्फ मालूमात नहीं बताई जा रही, तमीज़ सिखाई जा रही है, अदब सिखाया जा रहा है। इसी तरह अलम तरा कैफा, ओ ये तो इसके बाद ब्रेक दूंगा आपको, इसके बाद एक और फिर ब्रेक दूंगा। असल में चलिए मैं मिसाल ही देता हूं आपको। फर्ज करें कि आप जुमे के खुतबे के लिए गए, लेकिन आप देर से पहुंचे, ठीक है, तो देर से पहुंचे तो जहां जूते रखे जाते हैं ना, वहां आपको जगह मिली नमाज पढ़ने की, तो आपको खतीब नजर नहीं आ रहा, ठीक है, आप बाहर हो मस्जिद में, खुतबा तो शुरू हो गया लेकिन नजर नहीं आ रहा आपको। खुतबा हुआ तो बहुत ही जबरदस्त खुतबा, ऐसा खुतबा आपने कभी सुना ही नहीं जिंदगी में। आपके जहन में क्या बात की है इस बार, कौन था यह बंदा, ओहो मैं जाके इनसे मिलूं, इनसे हाथ मिलाऊं, अपने बच्चे के सर पर फूंक पड़वाऊं, कुछ करूं, क्योंकि आप खुतबे ने आपको बहुत मुतासर किया। अंदर जो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनको खतीब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हुआ ये कि जो अंदर था ना, वो एक लड़का था 16 साल का, उसने फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी, उसने बेसबॉल हैट पीछे लगाई हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, उसने जाके खुतबा दिया। तो जो अंदर खुतबा सुन रहे हैं वो तो किसी तरह सोच रहे हैं इसको किस तरह कत्ल करेंगे, या ये नमाज तो पता नहीं कबूल नहीं होगी, अब इसके एवज में हमें कितने बकरे ज़बह करने पड़ेंगे इसको ज़बह करने के बाद। एक तरफ जो बाहर सुन रहा है बात, वो कह रहा है माशाल्लाह क्या अजीम हस्ती आई है, और जो अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं किस शैतान को लगा दिया सामने। बात एक ही है लेकिन दोनों के तासुरात में फर्क है कि नहीं, क्यों, क्या फर्क है, सवाल ये है कि क्या फर्क है। एक को पता है कौन बोल रहा है और एक को नहीं पता कौन बोल रहा है। एक का सारा जहन, उसकी सारी की सारी सोच बात पर है, कलाम पर है। दूसरे की सारी सोच, सारी जहनीत किस तरफ है,

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
2: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
3: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। Inspire FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज और अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
6: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
8: Last time on Akhri Mojza.
9: Waha kaha aradna. Humne irada kiya. Humne irada kiya. Hum jama. To ye hum kaun huye? Iske baad kaha an arad fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma. Humne irada kiya ke unka rab इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे किसी और को, किसी एक और औलाद को उनको दे दे। तो जो तब्दील करने की बात हुई वो रब की तरफ मंसूब हो गई, तो बाकी किसके लिए रह गया? यानी खतर का किसके लिए रह गया? खतर के लिए। यानी ज़मीर का ताल्लुक, ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है अदब के एतबार से। वैसे तो किया सब अल्लाह ताला ने, लेकिन हमें सिखाया जा रहा है अल्लाह के बारे में बात कैसे की जाती है।